0: सामाजिक सुरक्षा कोष का योगदानकर्ता का लागि स्वास्थ्य उपचार चरक मेमोरियल हॉस्पिटल मा
1: सामाजिक सुरक्षा कोष को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत इसमें आबद्ध संपूर्ण औपचारिक क्षेत्र का योगदानकर्ता स्वरोजगार में रहकर योगदानकर्ता र वैदेशिक रोजगार में रहकर योगदानकर्ता तथा उनका श्रीमान श्रीमती र बाल बालिकालाई चरक मेमोरियल हॉस्पिटल मा स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउँदछौ।
0: शर्तहरू लागू हुनेछन् जसमा सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानकर्ताको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ, केवाईसी अपडेट हुनुपर्नेछ आदि।
1: विस्तृत जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061-582-778-582-779 र 582-780।
2: ए नानी, त्यो पानी नपिऊ त।
3: किन र काका?
2: त्यो पानी फोहोर छ।
3: शुद्ध र फिल्टर गरेको पानी मात्र पिउने गरौँ।
4: सार्वजनिक हितका लागि रेडियो आदि खोला।
5: सुन्नुहोस् न, अहिले हाम्रो गर्नेमा
6: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ी को पांच घरेता कुना को लाइन 315 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
5: रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

फ्रेश आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सेंचा।

छोड़ी जाने माया को पीड़ा मैफाई लौरी छाई इस समय ढेर खाल के भाका संगसंगे अब भी हमी कार्यक्रम छुट्टी जान पर्ने समय में आईपुग तब हरी मज रही रहने अस्त समय ढेर खाल का भाका सहयात्रा करने मन खुदा खुदाई छुट्टी जान पर्ने खुदा आगामी श्रृंखला में विशुद्ध नेपाली लोकगीत भाकासंगे सहयात्रा करने विश्वास दिलाऊ कार्यक्रम समय अवधि भर सुनेर साथ दिने संपर्ण में धीरे धन्यवाद को शब्द व्यक्त करते पृष्ठभूमि में बजी रह छोड़ आज के सुंदर बसाई सोमवार व्यवसाय विदा होने अनुमति चाहन्छु ज्ञान सूचना और मनोरंजन का सुंदर गर्नुहोला रेडियो आदि खुला यहां बाकी पल शुभ रहोस् मंगल रहोस् नमस्ते जय गीत जय संगीत।